0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
4: पर हम तो सब ही डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।

एमएस सुबालक्ष्मी की आवाज में अभी आपने संत मीराबाई का ये भजन सुना, और आइए एक बार फिर इसी आवाज को सुनते हैं। ये भक्ति पद भी संत मीराबाई का ही है।

महान भजन गायिका एम एस सुब्बालक्ष्मी के जन्मदिन पर हमने उन्हें इस कार्यक्रम में भजन के जरिए आज याद किया। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला और गैर फिल्मी गीत, स्वर जावेद अली का। गीतकार और संगीतकार हैं सुहित अभ्यंकर।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

रंग तरंग कार्यक्रम की अगली पेशकश आवाजें मुबारक बेगम, जानी बाबू कव्वाल और उनकी हमनवा की, और ये अजीज अगाजी की लिखी कव्वाली है। संगीत विपिन और महबूब का है।

और आइए अब सुनते हैं पापोन की आवाज। इसे श्वेता बोथरा ने लिखा है और धुन बनाई है पुनीत दीक्षित ने।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे

0: मिला राजस्थान साहित्य अकेडमी युवा का।
1: क्या बात है।
0: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
2: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
0: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी। हमने लिखा
2: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और आइए अब सुनते हैं चित्रा सिंह की आवाज में रोशन नादान का ये कलाम।

चित्रा सिंह की आवाज में अभी आपने ये गजल सुनी। कार्यक्रम में अब सुनिए कुमार का लिखा ये पारंपरिक गीत, आवाजें मीका सिंह, यो यो हनी सिंह और साथियों की।

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाली उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं हरिओम शरण की आवाज में ये भजन।

हरिओम शरण की आवाज में अभी आपने ये भक्ति पद सुना। आइए लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं ये नानक का शब्द। संगीत दिया है सिंह बंधु ने।

0: लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में अभी आपने गुरु नानक का ये शब्द सुना। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: रंग तरंग कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद मेहदी हसन का गाया ये राजस्थानी लोकगीत मांड गायकी के रूप में।

से मिनट समाज होने के सूरज तुम्हें मैं पूजूंगी, घर मोतीरारो थाल, मोतियों का थाल भर के मैं पूजूंगी।

0: ശ്രുതിയ
1: केसरिया बालम आहो ने पधारो मारे देश। अभी आपने उस्ताद मेहदी हसन की आवाज में ये राजस्थानी लोकगीत सुना। और इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलजार के लिखे बोल। गाने वाले कलाकार भूपेंद्र भूपेन हजारिका, नितिन मुकेश और साथी। इस गैर फिल्मी रचना को संगीत दिया है भूपेन हजारिका ने।
2: बंवराता

0: इस गैर फिल्मी रचना के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: रंग तरंग,
0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है

कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम गीतकार प्रसून जोशी के लिखे कुछ गीत लेकर आए हैं। आज उनका जन्मदिन है और विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें देते हैं ढेरों शुभकामनाएं। साथ ही आज इस कार्यक्रम में हम याद करेंगे संगीतकार राम लक्ष्मण को भी। तो पहले सुनते हैं राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में ये गीत।

कार्यक्रम में अब सुनिए राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में असद भोपाली का ही लिखा गीत, स्वर लता मंगेशकर, एसपी बालसुब्रमण्यम और साथियों की, फिल्म का नाम मैंने प्यार किया।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं राम लक्ष्मण का संगीत। नूर कसकार का लिखा गीत, आवाजें अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की, फिल्म का नाम महबूब मेरे महबूब।

अभी आपने राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में पत्थर के फूल फिल्म का ये दो गाना सुना। स्वर लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम के थे। इससे पहले आप सुन रहे थे फिल्म सातवां आसमान का गीत। गाने वाले कलाकार थे प्रीति उत्तम और उदित नारायण। सूरज सनीम के बोल थे और राम लक्ष्मण की धुन।

0: राम लक्ष्मण की संगीत निर्देशन में रविन्द्र रावल का लिखा गीत आपने सपना अवस्थी का गाया हुआ सुना। फिल्म का नाम था दुल्हन बनू मैं तेरी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: वो लिखती है रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
7: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
8: क्या बात है।
7: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
6: वो लिखती है जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती है सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती है मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
7: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी। हमने लिखा
6: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
9: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
10: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
9: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ।

दोस्तों, यादों की महफिल कार्यक्रम में अभी तक आप सुन रहे थे संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत, और अब सुनते हैं गीतकार प्रसून जोशी की गीत रचनाएं। फिल्म का नाम है दिल्ली सिक्स, आवाजें रेखा भारद्वाज और साथियों की प्रसून जोशी के बोल ए आर रहमान की धुन।

कार्यक्रम में आप सुनिए जतिन ललित का संगीत, प्रसून जोशी के बोल, शान और कैलाश खेर की आवाजें। फिल्म का नाम है फना।

कार्यक्रम का अगला गीत A.R. रहमान के संगीत निर्देशन में प्रसून जोशी का ही लिखा हुआ स्वर है बेनी दयाल श्रेया घोषाल की। फिल्म का नाम है गजनी।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हम तुम का युगल गान, आवाजें अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की, गीत प्रसून जोशी का और धुन जतिन ललित की।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सुरीला सफर बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी तो इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है और आज निकलेंगे ऐसे सफर पर जहां कुछ उबड़ खाबड़ बेतुके रास्ते होंगे। हाँ, कुछ ऐसे गीत हमारे साथ होंगे जहां शब्दों का अर्थ कुछ निकले या ना निकले ये जरूरी नहीं। हाँ, लेकिन ये जो गीत होंगे हमारे साथ ये मिठास घोल देने वाले गीत होंगे। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम किसी रास्ते पर निकल तो जाते हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, है ना, ऊपर नीचे नीचे ऊपर हमें करना पड़ता है, लेकिन कई बार बड़ा मजा आता है। बस ऐसे ही आज के इस सफर में कुछ ऐसे ही गीत हम लेकर आए हैं जो अर्थहीन लगते हैं उस गीत में प्रयुक्त होने वाले शब्द या वाक्य, लेकिन यही शब्द धुन में ऐसी मिठास घोल देते हैं कि वही शब्द या यूं कहें कि बेतुके शब्द उस गीत की पहचान बन गए हैं। तो आज के सुरीला सफर में उन्हीं बेतुके और निरर्थक बोलों वाले गीतों का हम जिक्र करने वाले हैं जो अर्थ से नहीं अपनी धुन और अंदाज से हमारा दिल जीत कर ले गए हैं। हाँ, और आज भी हम इन गीतों को याद कर मुस्कुरा देते हैं। मुस्कुराते हैं ना, कभी कभी तो हम हंस भी देते हैं। अब देखिए ना, हमने अपनी इबारत लिखी और उसके साथ ही लिखा कि आज आप ही सोचिए कौन से होंगे वो गीत, और हमारे श्रोताओं ने इतने सारे गीतों का जिक्र कर दिया कि हम भी पीछे रह गए। चलिए आज की इबारत पढ़ देते हैं उन लोगों के लिए, खास तौर से जो फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, लेकिन अगर आप हमारे फेसबुक परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं और विविध भारती परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। तो आज की इबारत या यूं कहें आज का जो टेक्स्ट है वो ये है कि संगीत की दुनिया भी बड़ी निराली है, यहाँ कुछ गीत बहुत अर्थवान मिलते हैं तो कभी कभी कुछ गड़े हुए अटपटे या निरर्थक से शब्द भी धुन के साथ मिलकर ऐसा जादू रच देते हैं कि गीत सुनने वाले बरसों बाद भी उन्हें भूल नहीं पाते। कभी कभी गीतों के आरंभ में, मध्य में या पूरे ही गीत के बोल सुनकर लगता है कि अरे ये क्या लिख दिया गीतकार ने। शब्दों का कोई सीधा साधा अर्थ नहीं होता, वाक्य का कोई सिर पैर नहीं होता, फिर भी वही बोल हमारी जुबान पर चढ़ जाते हैं और धुन दिल में उतर जाती है। तो चलिए आज आनंद लेते हैं उन गीतों का जिनके कुछ शब्द या बोल शायद शब्दकोश में ना मिले लेकिन उनकी धुन और अंदाज सीधे हमारे दिल तक पहुंच जाते हैं। तो आज सुरीला सफर में ऐसे ही बेतुके, अटपटे और निरर्थक शब्दों या वाक्य वाले गीतों का मजेदार सफर रहेगा जहां शब्द या वाक्य भले ही बेअर्थ लगते हों लेकिन धुन पूरी तरह असरदार है। तो हमने लिखा था कि आप भी याद कीजिए ऐसे कौन से गीत हैं जिनके शब्दों का या वाक्य का मतलब आज तक समझ में तो नहीं आया, फिर भी उस गाने को सुनते ही हमारा मन झूम उठता है। तो हमारे श्रोताओं ने तो बहुत सारे गीतों का जिक्र भी कर दिया है। अब देखते हैं आपकी पसंद और हमारी पसंद कितना मेल खाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: ജി ഹാ, ലാരലപ്പ ലാരലപ്പ ലായി ലപ്പദ, അടിടപ്പ അടിടപ്പ ലായി ലപ്പദ, കിത്ന ഖൂബ്സൂരത്. കാര്യക്രമ കീ ശുരുആത് ഇസ് ഗീത് കേ സാത് ഹംനേ കീ, ഓർ കുഛ ശബ്ദ് ഏസേ ഹോതേ ഹൈ ദോസ്തോ ജിൻകാ കോയി സീധാ സാധാ അർത്ഥ തോ നഹീ ഹോതാ, ലേക്കിൻ ഉൻകി ലയ ഓർ അദായഗി സുൻതേ ഹീ മൻ ഝൂം ഉഠതാ ഹൈ. ജൈസേ കീ അഭി ആപ്നേ ഇസ് ചട്ട്പട്ടേ ഓർ മസ്തി ഭരേ ഗീത് കോ സുനാ ലാരലപ്പ കേ രൂപ് മേ. ഫിലിം കാ നാം താ ഏക് ഥീ ലഡ്കി, ആവാസ് ലതാ മംഗേഷ്കർ, മുഹമ്മദ് റഫീ, ജി എം ദുർറാനി ഓർ സാഥിയോ കീ ഥീ. ഗീത്കാര് ഥേ അസീസ് കശ്മീരീ ഹാ, ഓർ സംഗീത് ദിയാ ഥാ വിനോദ് നേ. तो चलिए सुनते हैं अगला गीत. लेकिन उससे पहले हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत की खूबसूरती यही है कि उसे समझने के लिए हर शब्द का अर्थ जानना जरूरी नहीं. कभी कोई अटपटा सा शब्द, कोई अनोखी ध्वनि या अर्थहीन सी पंक्ति भी लय और सुरों के साथ मिलकर मन में उत्साह, शरारत और आनंद भर देती है. जहां शब्द शायद शब्दकोश में न मिले मगर उनकी धुन सीधे दिल तक पहुंचती है. आखिर गीत केवल अर्थ से नहीं बनता, वो सुर, लय, आवाज और एहसास से मिलकर यादगार बन जाता है. बस अब अर्थ के पीछे न भागें, धुन को महसूस करें और उन गीतों के साथ झूमें जिनके बोल भले ही अटपटे लगते हों. आपने कुछ गानों का जिक्र भी किया है, हो सकता है ये गाना हमारी प्लेलिस्ट में भी हो. एक श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश में उकेरे भाव वाले गाने कुछ अटपटे, विचित्र, निरर्थक स्वीकारोक्ति का, स्वरोक्ति का निरूपण करता दिख रहा है. संगीत शब्दों से परे ध्वनियों का एक संसार है. जब शब्द अर्थहीन भी होते हैं तब भी स्वर और ताल का संयोजन सीधे हमारे मन को छूता है. संगीत की कोई भाषा नहीं लेकिन भावानुवाद होता है और इसी को उजागर करते हैं आज के कुछ गीत. आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है और यकीनन इन गीतों में से हमने भी कुछ गीत अपनी लिस्ट में रखे हैं. एक श्रोता लिखते हैं कि जाने कितनी दफा इन अटपटे चटपटे गीतों को सुना है और इन गीतों की जुबा में ढले बोलों को, रेशमी छुअन को आज भी बरकरार रखा हुआ है. क्या हुआ अगर अटपटे बोल हैं, तो क्या हुआ अगर उन बोलों का अर्थ समझ में नहीं आया. इन गीतों के रचयिता और मीठी धुन में पिरोने वाले संगीतकार तो हमारे हृदय तल में आज भी बसे हैं ना. इन गीतों में राग रागिनियों का रस तो भाव भरा है. सुर और शब्द की परस्परता में प्रेम, करुणा और संवेदना के मानवीय मूल्यों की गहरी उपस्थिति हमें जोड़ देती है और ले जाती है हमें उस मोहक संसार में जहां बस संगीत का रसायन फिजा में दूर दूर तक घुला हुआ है. क्या बात है, बहुत सुंदर. तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत. और जैसा कि हमने कहा कि शब्द भले ही निराले हों मगर धुन ऐसी कि सुनने वाला अपने आप गुनगुनाने लगता है कुछ गीत. और आज के सुरीला सफर में तो हमने इन्हीं शब्दों की शरारत का आनंद भी लेना है. हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म दो आंखें बारह हाथ का ये गीत, बहुत ही मस्ती भरा अंदाज.
1: आओ आओ होनहारो प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे, उम्र के कच्चे, बात के सच्चे, जीवन की एक बात बताऊं, जीवन की एक बात बताऊं, मुसीबतों से डरो नहीं, बुजदिल बनके मरो नहीं, रोते रोते क्या है जीना, नाचो दुख में तान के सीना, नाचो दुख में तान के सीना.
0: जी हाँ, पूरे गीत में तक तक धुम धुम, तक तक धुम धुम सुनेंगे आप.

0: जाओगे?
1: ना तो क्या करोगे?
2: जी हाँ, इस गीत को सुनने के बाद तो हमारे पैर भी थिरकने लगे। आपके भी थिरक रहे थे? बताइएगा मुझे कि कैसा लगा ये गीत सुनकर आपको। हमारे श्रोता का लिखना है कि सुरीला सफर का आज का विषय बहुत ही मजेदार है। सच में संगीत का जादू ही ऐसा है कि कभी कभी बेतुके और अटपटे शब्द भी धुन के साथ ऐसे घुल जाते हैं कि बरसों तक हमारी जुबान पर रहते हैं। उन्होंने कुछ गीतों का जिक्र भी किया है और लिखते हैं कि इन गानों के शब्दों का कोई मतलब भले ही समझ न आए, पर इनकी मस्ती और धुन सीधे दिल में उतर जाती है और सुनते ही मन झूम उठता है, जैसे कि अभी हम झूम उठे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर को सुरीला संगीत के साथ साथ अर्थहीन शब्दों वाले गीतों से सजाया गया है। ऐसे ही इस कार्यक्रम में नयापन हो तो कार्यक्रम की प्रतीक्षा बढ़ जाती है, वरना इस कार्यक्रम में कुछ भी नयापन नजर नहीं आता। तो इसके लिए आप धन्यवाद देते हैं हमें कुछ अनोखे और जिसका कोई अर्थ ही न हो ऐसे गीतों से साझा। आज का ये कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आएगा। और आपने भी लारा लप्पा गाने का जिक्र यहां पर किया जो कि हमने आपको सुनवा भी दिया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो बड़े ही मजेदार शब्दों का गड़बड़ झाला लेकर आप आ रही हैं। ये वो शब्द होंगे जिनको हमने बहुत बार सुना है और हमारी जुबान पर चढ़ भी गए थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये गीत तो हमारे गीतकारों ने लिखे हैं और हमें तो उन्होंने झूमने पर मजबूर कर दिया है ना। एक श्रोता का लिखना है कि आज का सुरीला सफर मेरे ट्रेन के सफर के साथ साथ चलेगा। आज के कार्यक्रम का लुत्फ सफर में ही उठाएंगे। क्या बात है, तो आपका सफर बहुत ही मंगलदायी हो, है ना, मंगलमय हो, ऐसी हम शुभकामनाएं आपको देते हैं। और सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम आपके इसी सफर में। और आज के दो सवाल अब हम आपसे पूछना चाहेंगे। वही कार्यक्रम से जुड़े सवाल ही हैं कि ऐसा कौन सा गीत है जिनके बोलों का स्पष्ट अर्थ तो नहीं है, लेकिन वो अजीब सा जो शब्द है आपको आज भी याद है। जैसे अगर मैं अपनी बात कहूं तो त्रिदेव फिल्म का गाना है ना, ओए ओए ओए ओ वाह, ये गाना मुझे बहुत पसंद आता है। ये जो कार्यक्रम की शुरुआत में जिस तरह से गाया जाता है, अमित कुमार साहब गाते हैं, तो ये गाना जो शुरू होता है तो एक अलग ही रिदम महसूस होती है। और तो आपको भी बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द आपको पसंद आता है या आया किसी एक गाने का जिक्र बस। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि आपको किसी एक गीत की वो पंक्ति जो बेतुकी या निरर्थक जिसे हम मानते हैं, कौन सी है जो आपको सबसे मजेदार लगती है। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं। और देखिए, कभी कभी क्या होता है कि गीतकारों ने ऐसे गीत लिख दिए हैं जिनका कोई मतलब ढूंढने बैठे तो शायद उलझ ही जाएगा, लेकिन सुनते ही वो गाना चेहरे पर हमारी मुस्कान जरूर आ जाती है। तो ऐसे ही शब्दों की मस्ती है इस गीत में, जिसे आवाज दी है किशोर

0: बाबा लोग सुनो, काका लोग सुनो, दादा लोग सुनो, जल्दी जल्दी आले बादशाह सुना दे कुड़िए, ये पुत्र देख भाई इधर आ, खाली है पिंजरा, नहीं देख भाई इधर आ, अरे खाली है पिंजरा, पिंजरे के अंदर निकलेगा बंदर, पिंजरे के अंदर निकलेगा बंदर, यही परिचय है राजा जानी का, बोलो मसाल जवानी दीवानी का। ए चल बेटा, चल बेटा, बम बम बम बम, चीक चिक चाम चीक चिक बम, चीक चिक चाम चीक चिक बम, चिक बुब चिक बम, चिक बुब चिक बम, चिक बुब चिक बम, चिक बुब चिक, पढ़ के बोल बेटा बम बम, पढ़ के बोल बेटा बम बम, पढ़ के बोल बेटा, खिड़की खोल बेटा बम बम, चिक बम बम, चिक बम बम, थप थप ले ले बुचट कक कक, थप थप ले ले बुचट कक कक, फट फट ले धोबी फट कक कक, फट फट ले धोबी फट कक कक, ले बुचट का धोबी फट का, दिल सट का सदा सितारा। जमुरे जरा हटके, जल्द दिखा दे प्यारे लटके, यही से दिखेगा अलबत्ता, दिल्ली बम्बई कलकत्ता, अरे रामा कृष्णा प्यार की कहानी, चाहे देखो तो चोर चाहे काला पानी, कल आज और कल 20 साल पहले, एक से एक नहले पे दहले, एक से एक नहले पे दहले, आइकुम बैकुम काला तुड़ी जोधुर माता चौशुर बारी रेल कॉम जमा जाऊं पाप इसे आलोदम। कांदे की भाजी, हाय मुल्ला काजी, रसून की चटनी, हाय कटनी का बटरा, मुंशी मुनक्का पक्का पक्का, हुजूर अगदास दिमागे फुरकत, हुजूर अगदास दिमागे फुरकत, कमाले हलकत, कमाले हलकत, चल हट नट खंड पन घट चट पट, फुटबॉल वॉलीबॉल डस्टबिन बेसबॉल पिंग पोंग किंग कॉन्ग बॉल बॉल हॉल हॉल।
1: क्या शानदार गीत था, और हम तो ये सोच रहे हैं कि क्या सोच के मजरू साहब ने इस गीत को लिखा होगा, है ना? आपके मन में भी जरूर ये सवाल आया होगा। तो इस मजेदार गीत के बाद हम श्रोताओं के जो विचार हैं उनको शामिल करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि अर्थहीन शब्दों के गीतों से सजा सुरीला सफर कुछ अलग अंदाज में होगा, ऐसा हम सोचते हैं। कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये गीत के शब्द शब्दकोश में हैं भी कि नहीं, गीतकार ने क्या सोचकर लिखा होगा इन शब्दों को, और खूबसूरत तरीके से प्रस्तुतिकरण कर गीतों के शब्दों को गुनगुनाने के लिए इस प्रकार से ये हमारे लिए छोड़ दिया, और गीत हमेशा के लिए यादगार गीत बन गए। तो फिर सुनते हैं खूबसूरत गीतों का ये सफर आपके साथ। बिल्कुल आप सुन रहे हैं हमें उम्मीद है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में कई गीत ऐसे हैं जिसमें कुछ शब्द जोड़ दिए जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता पर सुनने में मजा आता है। ये ताल धुन और सुंदर संगीत के संयोजन पर निर्भर करती है। जीवन से नहार जीने वाले जिंदगी है खेल जैसे करके आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी शब्द अर्थ की तलाश छोड़कर सिर्फ धुन का हाथ थाम लेते हैं, फिर बेतुके से बोल भी सुरों में घुलकर ऐसी मिठास रचते हैं कि उनका कोई शब्दार्थ न होते हुए भी वे मन की भाषा बन जाते हैं। संगीत की यही खूबसूरती है, जहां शब्द चुप हो जाते हैं वहां धुन अपना अर्थ खुद लिख देती है। आज सुरीला सफर उन्हीं अलहड़ अटपटे और बेपरवाह बोलों की दिलचस्प दुनिया में ले जाएगा, जहां अर्थ भले न मिले मगर आनंद भरपूर मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं आज आपको आनंद तो भरपूर मिल रहा है ना?

0: सवालों को एक बार फिर से दोहरा देते हैं। हमारा पहला सवाल था, ऐसा कौन सा गीत यानी किसी एक गीत का नाम आपको बताना है जिनके बोलने का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं था, लेकिन वो अजीब सा शब्द या वाक्य आपको आज भी याद है। जैसे कि हमने आपसे कहा ओए ओए, ये जो वाक्य हमें बेहद पसंद आता है, खासतौर से मुझे। और वहीं हमारा दूसरा सवाल है कि आपको किसी एक गीत की वो पंक्ति जो बेतुकी लगती है या निरर्थक लगती है या आपको हंसा देती है, कौन सी है जो आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगती है। जैसे कि अगला गीत जो हम सुनने वाले हैं ना, उसमें वो पंक्ति हमें बेहद पसंद आती है, कौन सी बताइए। फिल्म जंगली का गीत है वो। शुकू शुकू अय्या करूं मैं क्या, सुकू सुकू, है ना। तो कभी कभी प्यार में दिल की बात कहने के लिए बड़े बड़े अल्फाज नहीं चाहिए होते दोस्तों, बस एक शरारती सी धुन और कुछ अनोखे बोल काफी होते हैं। और ये जो गीत अब आप सुनने वाले हैं, इसके बोल भी उसी मस्ती और चुलबुलेपन का हिस्सा है। तो आइए सुनते हैं फिल्म जंगली का ये दिलकश और मस्त मौला गीत। शैलेन्द्र के बोल है, शंकर जयकिशन की धुन है। और हाँ, ये भी बताइएगा, फिल्म जंगली का एक और गीत है जिसे हम अक्सर कहीं न कहीं उस शब्द को गाते हैं या पसंद करते हैं। लिखना शुरू कर दीजिए।
1: करूं मैं क्या सुकू सुकू, अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू, खो गया दिल मेरा सुकू सुकू।

दीवाना कहे कोई परवाना कहे जलने को बेपरार चाहत का मुझ पे असर मैं दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर मंजिल है मेरी प्यार अय्या करूँ मैं क्या सुकू सुकू हो गया दिल मेरा सुकू सुकू अय्या करूँ मैं क्या सुकू सुकू

0: बच्चों को मत ऐ दोस्तो, यूं ही मुझसे मत डरो, मेरे भोले प्यार को नादानी ना समझो। हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी ना समझो।
1: अय्या सुकू सुकू
0: अय्या करूं मैं।

हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि इसी फिल्म में एक और गाना है याहू, है ना। ये गाना हमें बेहद पसंद आता है और जब भी हम खुश होते हैं तो इसी अंदाज में गाते हैं याहू। बिल्कुल, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात का जवाब हमें दे दिया है कि वो कौन सा गीत है। वो यही गीत है चाहे मुझे कोई जंगली कहे। और भी श्रोताओं ने लिखा है कि श्रीदेवी का हवा हवाई गाना उन्हें बहुत पसंद आता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि

ऐसे उल्टे पुल्टे गीतों में मुझे जब जब फूल खिले का गीत रफी साहब का है वो पसंद आता है, और फिल्म कारवां का भी जो आशा जी की आवाज में है कि मैं कहां आप फंसी वो वाला गाना इन्हें बेहद पसंद आता है। एक श्रोता को किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मेरे सामने वाली खिड़की में उस गाने की जो शुरुआत है वो बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता को यम्मा यम्मा जो गाना आर डी बर्मन की आवाज में है वो बेहद पसंद आता है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हिंदी सिनेमा के गीतों में अटपटे या बेतुके शब्दों जिनका शब्दकोश में कोई अर्थ नहीं है का इस्तेमाल बहुत पुराना है। इसके साथ साथ कुछ गीतों में दूसरी भाषा के शब्द या वाक्य का प्रयोग गीत के मीटर को ध्यान में रखते हुए भी किया जाता है, लेकिन वे बेतुके नहीं होते और उनका अर्थ होता है, जैसा कि दो फूल का गाना है मुत्तु कोड़ी कवाड़ी हड़ा। बिल्कुल सही कहा आपने, वो निरर्थक नहीं है, लेकिन चूंकि हम तमिल गीत को नहीं समझ पाए, उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाए, उस वाक्य को नहीं समझ पाए, तो हमें लगता है कि अरे ये क्या दिया है गीत करने, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा है जब हम समझते हैं तब पता चलता है, लेकिन उसको सुनते समय हमें लगता है कि कितना बेतुका सा शब्द लगता है ना। और वहीं और सारे गानों का जिक्र भी आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं अभी मुंबई की उड़ान पर हूं, इसलिए आज के दिलचस्प कार्यक्रम में प्रतिभागी नहीं बन रहा हूं, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं। अरे आप तो हमारे नियमित श्रोता है और लगातार लिखते हैं, अच्छी बात है, आपकी यात्रा मंगलमय हो हम ये उम्मीद करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का अंदाज और मधुर आवाज का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। अच्छा, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा में मंदाकिनी जी अपने आप में एक ऑल राउंडर उद्घोषिका हैं। अच्छा अच्छा, चलिए आपने हमारी तारीफ में लिखी है कुछ चंद पंक्तियां, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। एक श्रोता लिखते हैं कि सच में संगीत अद्भुत कला है जिसे वरदान स्वरूप इंसानों को मिला है। कई पुराने गीतों में उटपटांग शब्दों को भी इतने सुंदर तरीके से लिखा गया है, ढालकर प्रस्तुत किया गया है कि आश्चर्य भी होता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अत्यंत सुंदर गीतों से सजे हुए सुरीला सफर में कई दोस्तों को नमस्कार लिखते हैं और हमें भी हंसती खिलखिलाती हुई। अच्छा हाँ, धन्यवाद, शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत में गीत शब्दों का अर्थ गठन करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन करना है, चाहे टिम्बकटू हो या काठमांडू, लारालप्पा कहते हुए अपलम चपलम हो, गापूजी गापूजी हो, या फिर देखिए डमडम डिगा डिगा होता है, अगर नहीं हुआ तो इनामिना डीका होगा, और होना ही है। विविध भारती के लिए इतना जरूर कहते हैं कि आहा झमाझम प्यारे प्यारे गीत लिए, जब छोटी बहना मंदाकिनी जी आ रही है तब झिंगुर तो बोलेगा, और चिकी मिकी जब हमारी नजर टिकी हुई है घड़ी की सुई की और तो कब एक बजने वाला है, और चिल चिल के कजरी सुनने को मिले। क्या बात है, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी इबारत पेश की है, शुक्रिया, मेहरबानी। और आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। अमित कुमार, सपना मुखर्जी और साथियों की आवाजें, फिल्म का नाम त्रिदेव। कितना चला था ये ओए होए, याद है आपको? इससे जुड़ी कोई घटना याद हो तो बताइए।

हमारे श्रोताओं ने हमारे सवाल का जवाब दे दिया है। आप लिखते हैं कि अजी किबला मोहतरमा ये गीत हमें बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि तू चीज बड़ी है मस मस ये मोहरा फिल्म का गाना हमें पसंद है। एक श्रोता को किशोर कुमार का फिल्म मिस मैरी का गाना गाना न आया बजाना न आया ये गाना बहुत पसंद आता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमसे आंख मिलाना बीए पास करके ये गीत इन्हें बेहद पसंद है। एक श्रोता को किशोर कुमार जी का एक गाना पसंद है जगत नारायण की जय जय बोलो और नगर नारायण

छोड़ो, उसमें भी बीच में बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, शब्द आते हैं जो उन्हें बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता को मुझे संगम फिल्म का गीत लिखते हैं कि मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, ये गाना बेहद पसंद आता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि क्या बात है, आज तो आपने मेरी मनपसंद का ये सबसे मनपसंद गीत सुनवा दिया जिसमें किशोर कुमार की आवाज है। और मैं अभी यही बताने वाला था कि मुझे ये गीत बहुत पसंद है, आपने जो सवाल पूछे थे उसका पहला जवाब यही है कि किशोर कुमार का गाना ये गीत हमें बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक गीत याद आ रहा है, मैं हूं झुमझुम झुमझुम झुमरू, ये गीत बहुत पसंद आता है। वहीं एक श्रोता को हेलन जी पर फिल्माया गया गाना आ जाने जा, इसमें जिंगा लाला हूं जो शब्द आते हैं वो इन्हें बेहद पसंद आते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये शालीमार फिल्म का गाना है, इसमें ये पंक्तियां आती हैं जिंगा लाला हुर हुर ऐसे करके आती हैं। तो आप कहते हैं कि इसका मतलब आज तक समझ नहीं आया मंदाकिनी जी, लेकिन गाने का आनंद तो आप उठाते हैं ना। एक श्रोता को इलू इलू गाना जो था वो बहुत पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नीलकमल पिक्चर का गाना है खाली डिब्बा खाली बोतल, ये बहुत अच्छा लगता है। एक श्रोता को पांच रुपया बारह आना गाना जो है किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया हुआ वो बेहद पसंद आता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि पड़ोसन फिल्म का गाना इन्हें बेहद पसंद है, साथ ही फिल्म झुमरू का गाना आपने लिखा है जा रे जा तू मुंह धो के आ, जहां किशोर कुमार और आशा भोसले इस गीत को गाते हैं वो गीत बहुत पसंद आता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे गे गे गे गे गेली जरा टिम्बकटू वाला गाना बहुत पसंद है। और एक श्रोता को पड़ोसन फिल्म का गाना बहुत अच्छा लगता है, साथ ही एक श्रोता ने लिखा है कि डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, ये गाना हमें बेहद अच्छा लगता है। आइए चलते हैं अगले गीत की ओर। खय्याम साहब का संगीत है, साहिर लुधियानवी के बोल हैं, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है त्रिशूल।

0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि इन अटपटे और अर्थहीन जैसे लगने वाले शब्दों को लोगों के दिल तक पहुंचाने में सचमुच संगीतकार का बहुत बड़ा योगदान होता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत दिनों बाद ये तक धुम धुम गाना सुना, अटपटा है मगर सुर लय के कारण बहुत ही कर्णप्रिय लगता है। एक श्रोता लिखते हैं कि कोई भी गाना निरर्थक नहीं होता, जो संगीत मन को भा गया वही अर्थपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, कभी गीत निरर्थक नहीं होता। हमने कहा कि हमें कुछ शब्द ऐसे लगते हैं जो बेतुके से लगते हैं या निरर्थक लगते हैं, तो लेकिन उनका इस्तेमाल कितने खूबी के साथ किया गया है कि वो गीत हमारे मन में एक छाप छोड़ जाता है, तो उन गीतों का जिक्र आज हम कर रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बेतुके शब्दों से बने गीत अक्सर आपस में खेली जाने वाली अंतराक्षरी की शान होते हैं, जिसे सब बढ़ चढ़कर गाना पसंद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं, आप हर बार नया विषय खोजकर लाती हैं जो आपके रिसर्च वर्क को दर्शाता है। दूसरे आपकी इबारत एकदम नपीतुली है, टू द पॉइंट, कोई फालतू बात नहीं है, गागर में सागर की तरह। आज अटपटे शब्दों वाले गीत विषय पर मुझे एक अलग तरह का गाना याद आ रहा है, मोहम्मद रफी साहब और शमशाद बेगम की आवाज में है और तारा रम पम पम पम करके ये गाना है जो इन्हें बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो हमारा दिमाग सुन्न हो गया है, कुछ भी गाने समझ नहीं आ रहे हैं। अरे आप इस कार्यक्रम को सुनने के बाद तो आपको लगा होगा ना कि आज हमने किस तरह के गीतों को चुना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रस्तुत गद्य में इबारत की बात सामने आई है, आज कुछ ऐसे गीतों की बाहर है जिनके शब्दों में अर्थ भले ही हमें शब्दकोश में न मिलते हो लेकिन उनकी धुन सुर लय ताल हमारे जहन में है ना, कितनी अच्छी बात। अरे दिल तो अभी से ही हक्कू बक्कू करने लगा है। और आपने कई शब्दों का जिक्र भी किया है जो किशोर दा अपने गानों में अक्सर करते हैं, ओ पांडुबा है ना, इस तरह के गाने किशोर दा ने बहुत गाए हैं, उनका जिक्र आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के गीतों की गणना हास्य गीतों में की जा सकती है और हर जीवन में हास्य की बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि जीवन के आपाधापी में प्राय सभी के चेहरे से हंसी गायब हो गई है। इस दृष्टिकोण से आज का यह इबारत प्रशंसनीय है अपितु सराहनीय भी है। अब देखिए ना, पुराने किशोर कुमार अभिनीत फिल्म आशा में किशोर कुमार ने एक गीत गाया है इना मीना डी का और संजीदगी से भरा वो गीत है, लेकिन जब उसे सुनते हैं तो उसका कुछ और ही रूप नजर आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए, जब इस गाने का जिक्र हो गया है तो सुन लेते हैं यही गीत। सी रामचंद्र यानी चितलकर साहब का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण की भूल है, किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम है आशा।
1: ina mina di

0: खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न लूंगा, मगर ये कहूंगा
1: क्या
0: यही है यही है यही तो है वो।

तो किशोर कुमार और साथियों को आपने सुना, फिल्म का नाम था आशा और ये गीत तो हमने कई बार कई जगह गुनगुनाया भी है और कई कार्यक्रमों में हमने इस गीत को बखूबी और लोगों को गाते सुना भी है। लोग कोशिश करते हैं कि इस गीत को किस तरह से हास्य से परिपूर्ण बना दिया जाए, है ना? आपने भी कोशिश की कभी इस गीत को गाने की? बताइएगा। और अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं, जहां हम आपको सुनवा रहे हैं बप्पी लाहिड़ी के संगीत निर्देशन में इंदिवर के बोल, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है हिम्मत वाला। बताइए इसमें कौन सी पंक्ति है जो हमें थोड़ा सा अटपटी लगती है लेकिन बड़ी मजेदार है?

हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत संगीत की उस अनोखी दुनिया की ओर ले जाती है जहां हर बात का अर्थ होना जरूरी नहीं होता। कभी कभी कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका कोई स्पष्ट मतलब नहीं मिलता, फिर भी वे धुन के साथ मिलकर यादों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। ऐसे ही गीतों से जुड़ा है आज का ये कार्यक्रम और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारे गानों का जिक्र भी किया है जिनमें हमें ये अटपटे और चटपटे शब्द सुनाई देते हैं और वो गीत हमेशा के लिए यादगार बन भी जाता है। फिलहाल आज का कार्यक्रम यहीं तक और फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में। अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार। I want full newspaper coverage. I want magazine stories. I want books. I want films. I want TV. I want radio. I want

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम समाप्त होता है। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों में।

0: सखी सहेली
1: सभी सुनने वालों को, सखियों को, सहेलियों को, सखाओं को, श्रोताओं को चंचल और माँ का प्यार भरा नमस्कार।
2: और सभी श्रोताओं को, हमारी सखियों को, दीपा माहेश्वरी का, चंचल आपको भी,
1: दीपा माहेश्वरी का आपको भी
2: हेल्दी नमस्कार।
1: हाँ जी, हेल्दी नमस्कार। और त्योहार आते हैं ना, तो उस वक्त हम इतने कई बार मसरूफ हो जाते हैं ना कि सेहत की तरफ ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हम बिल्कुल सुबह जल्दी उठ रहे होते हैं, रात को देर से सो रहे होते हैं, और खाने पीने का समय है वो भी अनियमित हो जाता है, खाने पीने की जो चीजें हैं वो भी कुछ गड़बड़ा जाती है।
2: बिल्कुल, और खास तौर पे जो घर की महिलाएं हैं, क्योंकि सबको देने में, सबके लिए ध्यान रखने में, और जो घर में मेहमान आते हैं उनका ख्याल रखने में कहीं अपना ख्याल पीछे छूट जाता है।
1: बिल्कुल, सबसे पहले जो आगंतुक है, मेहमान है
2: जी,
1: हमारे अतिथि हैं, उनको हमारी कोशिश रहती है कि उनको पहले परोसा जाए, और सबका करते करते इतनी देर हो जाती है कि जो दोपहर के भोजन का समय होता है एक से दो के बीच का, तीन बज जाते हैं, चार भी बज जाते हैं।
2: हाँ बिल्कुल, ऐसा ही कुछ होता है। और आज तो बहुत कुछ होने वाला है हमारे कार्यक्रम।
1: बिल्कुल बिल्कुल, त्योहार की हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि ये हमारी विरासत है, धरोहर है, हमारी परंपराएं हैं जिन्हें हम निभा रहे हैं
2: जी।
1: और यही अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दे पाएंगे।
2: बात तो बिल्कुल सही है, और बहुत सारे संदेश इस बात को लेकर के हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है, इसीलिए बात होगी। पहला विषय जो है हमने चुना है आज के लिए कि त्यौहार हमारी धरोहर, हमारी परंपरा, इस पे आप क्या सोचते हैं और आप कितना इसको आगे बढ़ाने में इसकी कोशिश जारी रख रहे हैं।
1: बिल्कुल, अगर कोई चीज को आगे बढ़ाना है हमारी धरोहर को, तो आदान प्रदान बहुत जरूरी है ना।
2: अरे बिल्कुल,
1: क्योंकि जब तक हम चीज कोई किसी को देंगे नहीं, वो उसको ग्रहण कैसे करेगा, और वो ग्रहण करेगा तभी तो आगे पहुंचाएगा, यही तो होता है आदान प्रदान।
2: बिल्कुल सही कहा। और देखो ना भाई, आदान प्रदान अच्छी चीजों का हो वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप पर्यावरण में कुछ ऐसे विषैले पदार्थ लगातार अगर निकालते चले जा रहे हैं, तो फिर देखिए ओजोन परत के संरक्षण में गंभीर विषय अब बन चुका है वो, और उसमें कई सारी तकलीफें आ रही हैं। और यही बातों को समझने के लिए आज हम ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं।
1: बिल्कुल, इस पर भी विस्तार से बात होगी, और हमारे सुनने वाले शायद इस बात को समझ रहे हैं कि हम सीधे सीधे विषय नहीं बता रहे हैं, लेकिन बातों से उन्हें अंदाजा हो गया कि हम किन चीजों के बारे में, किन विषयों को लेकर आज बात करने वाले हैं।
2: अरे भाई इतना देखिए, गंभीर न हो जाइएगा, आज व्यंजन भी है, क्योंकि मोदक के कई सारे प्रकार चंचल हमें बनाने हैं, और बहुत सारे संदेश आए हैं, और बड़े मजेदार कुछ रेसिपीज भी हमारी सखियों ने लिख भेजी।
1: तो तुमने ओजोन दिवस की जब बात की, मुझे याद आया कि और भी दो महत्वपूर्ण दिवस आज हम मना रहे हैं। एक तो है हृदय में हस्तक्षेप द्वारा उपचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और आम बोलचाल की भाषा में डॉक्टर्स इसे इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी दिवस कहते हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2022 में घोषित किया गया था, और इसी दिन 16 सितंबर यानी 2077 को डॉक्टर एंड्रियास ग्रुटिजिक ने पहली बार एक सफल एंजियोप्लास्टी की थी, और इसीलिए दिल की जो बीमारियां हैं, जो सर्जरी है, उसके बारे में जागरूकता हो, इसलिए दिवस हम मना रहे हैं।
2: बिल्कुल, और ये दिवस के साथ याद आया चंचल, एक और मुख्य दिवस है आज, है दक्षिण के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो सितंबर 2023 में इस दिन के आयोजन का फैसला हुआ था, और 9 जनवरी 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये प्रस्ताव पारित करके 16 सितंबर को ये आधिकारिक दिवस घोषित किया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है ग्लोबल साउथ यानी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया के विकासशील देशों में विज्ञान और

0: टेक्नोलॉजी की कमी को पूरा करना, ताकि गरीबी, असमानता या जलवायु परिवर्तन जैसी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके और ये देश पीछे कहीं ना रह जाए।
1: बिल्कुल, जलवायु की बात होती है तो ओजोन की बात भी होती है। हम विस्तार से इन सब को लेकर बात करेंगे, लेकिन पहले गीत सुन लें।
0: गीत भी सुनेंगे भाई, साड़ियों का जो लगाव है उससे कैसे हम पीछे सूट।
1: अरे हाँ भाई, विषय बताते बताते हम ये तो भूल ही गए कि आज साड़ियों की बात भी होनी है, तो आज कौन सी खास साड़ी की बात होगी?
0: आज हम करेंगे मोठड़ा साड़ी। आप बताइएगा कौन से प्रदेश से आती है ये साड़ी।
1: जी,

यशुदास की आवाज में बहुत खूबसूरत ही गीत हम सुन रहे थे। और गीत से पहले बहुत सारे महत्वपूर्ण दिवस की भी हमने बात की। इन्हीं में से एक है ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और ओजोन दिवस भी कहते हैं इसे हम। सूरज की प्रकाश, सूरज का जो प्रकाश है ये हमारे जीवन को संभव बनाता है, लेकिन जो ओजोन परत है वो जीवन के रूप में से संभव बनाती है जिसे हम जानते हैं। और ओजोन परत गैस की एक बहुत नाजुक ढाल की तरह होती है जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। इस तरह से ये पृथ्वी पर जीवन को संरक्षित करने में भी बहुत

0: ज्यादा जरूरी ओजोन
1: है, सही कहा।
0: और इस दिवस का आयोजन करने के कारण भी ये खास है, ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ ही इसे बचाने के समाधान की ओर ध्यान खींचना बहुत आवश्यक है।
1: बिल्कुल, जिस तरह से हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ओजोन परत जो है, जो हमारी सुरक्षा कर रही है, उसको भी हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए इस बारे में ध्यान खींचा जा रहा है और ओजोन परत की सुरक्षा के लिए इसे खतरनाक गैसों से बचाना है। सबसे ज्यादा खतरनाक गैसों में कुछ हैं CFC, जिसे क्लोरोफ्लोराइड कार्बन के नाम से हम जानते हैं, हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन और मिथाइल ब्रोमाइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये कुछ ऐसी गैसें हैं जो कि इस परत को नुकसान पहुंचाती हैं। और जब 1970 के दशक के अंत में वैज्ञानिकों को इस बारे में पता चला कि मानवता इस सुरक्षा कवच में छेद कर रही है, यानी कि हम ही लोग इसको बिगाड़ रहे हैं, तो जब उन्होंने इसके प्रति चिंता जताई कि इस तरह से अगर ये होता रहेगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, और हमारा हम जो चीजों को इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, इनसे जो गैस निकलती है ना, ये वही गैसें हैं जो इस परत को नुकसान पहुंचाती है।
0: बिल्कुल, और जो हमारे जो निजी साधन है परिवहन के, उनका अधिक उपयोग करने से भी बचना है, और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना है, या साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं, पैदल चलने का प्रयास कर सकते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल, जो बहुत ही अच्छे ये समाधान है। इससे पहले हम घर में भी काम कर सकते हैं।
1: हाँ।
0: वो कैसे कि भाई अगर आप हर कमरे में एयर कंडीशन चलाकर हर परिवार का एक एक सदस्य अलग अलग कमरे में बैठेगा और हर रूम का अलग अलग AC चलाएगा, तो बताइए कि कितना हम पर्यावरण का नुकसान पहुंचा रहे हैं।
1: बिल्कुल, वो गैस कितनी ज्यादा हवा में फैल रही है। इसके अलावा आपका भी बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आर्थिक नुकसान भी होता है, तो दोनों ही नुकसान को हम बचा सकते हैं, रोक सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और साथ में बहुत जरूरी है कि आप AC को एक या तो कमरे में चला लीजिए, फिर भी ना संभव है तो कुछ इस तरह से कीजिए कि सारे लोग एक वक्त तो एक ही जगह पर बैठे। उसके साथ में बहुत जरूरी है कि आप खिड़की दरवाजे थोड़ी सी देर खुले रखिए, स्वच्छ और शुद्ध हवा का आवागमन भी घर के लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, और इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों में ओजोन परत के बचाव को लेकर उन्हें जागरूक किया जा सके, इसे संरक्षित करने के संभावित उपाय खोजे जा सकें। इसे देश दुनिया ओजोन परत पर बातचीत करती है और सेमिनार भी आयोजित किए जाते हैं ताकि इसकी सुरक्षा हो सके।
0: बिल्कुल, और चंचल ये दिन हमें याद दिलाता है कि ओजोन न केवल पृथ्वी पर बल्कि जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी ओजोन परत की रक्षा करना हमें आज से ही जारी रखना होगा।
1: बिल्कुल, जिस तरह से हमारे लिए हवा पानी जरूरी है, सूरज की किरणें भी जरूरी हैं, तो सूरज खुद जलकर हम तक ये रोशनी, प्रकाश और बहुत सारी चीजें हम तक पहुंचाता है। वो जलता रहे लेकिन उसे कोई नुकसान ना पहुंचे।

0: तो भाई सूरज की सुरक्षा के लिए, यानी कि हम सब सूरज की जब रोशनी हमें मिलती है तो वो अल्ट्रा वायलेट रेज सीधे हम तक ना पहुंचे, उसकी सुरक्षा के लिए ओजोन परत की सुरक्षा बहुत
1: बहुत
0: जरूरी
1: जरूरी
0: है।
1: है, और
0: और
1: हमारे
0: हमारे
1: पर्यावरण के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी
0: हमारे
1: है।
0: श्रोता भी इसी बारे में बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, और उनका भी यही कहना है कि ये एक महत्वपूर्ण परत है और क्षयकारी पदार्थों का उपयोग कम करना जरूरी है, पर्यावरण अनुकूल साधनों को अपनाना होगा, लोगों में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है, ओजोन परत की रक्षा हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य की रक्षा करना है। ये
1: जी
0: लगभग सभी
1: सभी
0: हमारे
1: के,
0: श्रोताओं ने
1: हाँ
0: लिखे
1: जी
0: थे।
1: हाँ
0: जी
1: बिल्कुल इसी तरह के आए हैं। और देखिए ना, जब ये सारी बातें होती है जागरूकता की, तो एक चीज की और जागरूकता आ जाती है कि जब त्योहार आ रहे हैं तो मन कैसे एकदम जागा जागा सा रहता है, बिल्कुल है ना, खुश खुश रहता है, और घर में सारा चहल पहल लगी रहती है। सुबह जल्दी उठना है कोई परिवार का सदस्य, क्योंकि कुछ तैयारी करके देर से सोया है, तो कुछ परिवार के सदस्य जल्दी उठ करके उसकी तैयारी कर रहे होते हैं।
0: ये देखिए ना,
1: और
0: ये जो सावन का महीना आता है ना,
1: जी
0: इसमें तीज, फिर रक्षाबंधन, फिर खत्म होते होते फिर ये जो आता है गणेश चतुर्थी, और महाराष्ट्र में तो चलिए बहुत धूमधाम से मनाया ही जाता है, अब तो देश के हर हिस्से में ये
1: बिल्कुल
0: बहुत धूमधाम से मनने लगा है।
1: जी।
0: इसके
1: और
0: खत्म होते होते कुछ दिन बाद ही फिर नवरात्रि आ जाएंगे, फिर दिवाली की शुरुआत हो जाएगी, और यूं जो सिलसिला है ना, अभी रुकने नहीं वाला है।
1: बिल्कुल, वो इसलिए रुकने नहीं वाला है चंचल, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, हमारी परंपराएं हैं, और जीवन में त्योहार ये सिर्फ कैलेंडर पे आने वाली तारीखें नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, परंपराओं और भावनाओं से जुड़े खूबसूरत अवसर होते हैं।
0: बिल्कुल
1: और हमारे देश में अगर त्योहारों का देश कहा जाए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें। ये
0: हाँ
1: अलग अलग धर्म है, भाषाएं हैं, और अलग अलग क्षेत्रों के लोग अपने अपने त्योहार मनाते हैं, लेकिन हर त्योहार के पीछे एक भावना दिखाई देती है, खुशियां बांटना और लोगों को एक दूसरे के करीब लाना।
0: देखिए, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग त्योहार तो होते ही हैं दीपा, लेकिन एक ही त्योहार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है।
1: बिल्कुल
0: कहीं खान पान का थोड़ा सा फर्क होता है, कहीं पहनावे का, तो कुछ कुछ रीति रिवाजों का बहुत थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि वो चीजें होती मिलती जुलती ही हैं, जो उनका मतलब है, अर्थ है, वो एक ही होता है।
1: जी
0: अब दिवाली हो, होली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरुपर्व, पोंगल, गणेश उत्सव, नवरात्र, हर त्योहार का जो है अपना एक अलग रंग होता है, स्वाद होता है, और एक संदेश लेकर भी वो आता है।
1: बिल्कुल
0: त्योहारों के माध्यम से हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है वो अपने जड़ों से जुड़ती हैं, रीति रिवाजों को जानती हैं, और जो हमारे पूर्वज हैं वो बड़े प्यार से इन चीजों को संजो कर रखते हैं।
1: और त्योहारों की सबसे सुंदर बात चंचल ये लगती है कि इसमें परंपरा के साथ अपनापन जुड़ा होता है। और त्योहार आते ही देखो ना, घर में साफ सफाई शुरू हो जाती है, तरह तरह के पकवान बनते हैं, फिर घर भी सजता है, रिश्तेदारों को और मित्रों को हम जो मिलने मिलाने का एक सिलसिला सा शुरू हो जाता है, कहीं पर हम आमंत्रण दे रहे हैं, कहीं पर हम आमंत्रित हैं, इस तरह की बातें भी होती है। और कई बार तो त्योहारों का इंतजार इसलिए भी होता है कि इसी बहाने परिवार के सभी लोग एक साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, और फिर वो पुरानी यादों को फिर से जिया जाएगा।
0: बिल्कुल, जब हम दिवाली मना रहे तो पिछली दिवाली पर क्या हुआ था ये याद करते
1: हाँ।
0: हैं, इस साल जब हम गणेश उत्सव मना रहे हैं तो याद करते हैं कि पिछले साल मूर्ति कैसी थी, कौन कौन मेहमान आए थे, किस तरह से धमाल मस्ती हुई, क्या पकवान घर में बनाए गए थे, ये पिछली जो बातें होती है ना, वो यादों की एक फहरिस्त तैयार होती जाती है।
1: बिल्कुल, और परंपराएं केवल पूजा पाठ या रस्मों तक सीमित नहीं होती है, इनसे पीछे जीवन को बेहतर बनाने की सीख भी छिपी होती है चंचल। जैसे दीपावली हमें अंधकार पर प्रकाश का विजय का संदेश देती है, होली आपसी भेदभाव भुलाकर प्रेम के रंग में रंगने की सीख देती है, फिर देखिए ना, ईद हमें भाईचारे और साझेदारी का संदेश देती है, तो क्रिसमस प्रेम और करुणा की भावना हमें जगाता है हमारे अंदर। यानी हमारे त्योहार हमें हर साल याद दिलाते हैं, मानवता, प्रेम और सद्भाव ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।
0: और हमारे एक संदेश में हमें बताया गया है कि त्योहार हमारी धरोहर और हमारी परंपराएं हैं, हम सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि पूरे साल हम विभिन्न त्योहार उत्साहपूर्वक मनाते हैं जो हमारी धरोहर है, और हम परंपरा के अनुसार इन्हें मनाते हैं। जैसे इस समय हम गणेश उत्सव मना रहे हैं, हमने घर में पूजा के कमरे में मिट्टी से बने हुए गणेश जी की स्थापना की है, 11 दिनों तक सुबह और शाम घर के सभी सदस्य आरती में उपस्थित रहते हैं। एक बेटी है जो कि बाहर जॉब करती है, बाहर उसकी पोस्टिंग है, लेकिन फिर भी वो वीडियो कॉल के माध्यम से इस पूजा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा देती है, और यही हमारी धरोहर है, हमारी परंपरा। परंपरा है। कई सालों से इस परंपरा को हमारे घर के सभी बड़े निभा रहे हैं, इसे हमने भी कायम रखा है। यही तो बात हम भी कह रहे हैं ना कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को पूंजी के रूप में इन चीजों को सौंप कर जाने वाले हैं।
1: और एक हमारे जो हमारी सखी, उन्होंने कुछ अलग अंदाज में लिखा है। वो कहती है, आए त्योहार खुशी की बहार, दीप जले सजे घर के द्वार, रंग बिरंगे उमंगों का मेला, रह न जाए कोई अकेला, मिलकर गाए खुशियां मनाए, प्यार का संदेश हम सब पहुंचाएं।
0: तो बस हर दुख छोड़कर, हर चीज को भुलाकर हम भी खुशियों की रंगरेलियां मनाएं।
1: चलिए।

0: भाई चंचल, देखिए गम छोड़ना तो चाहिए, बिल्कुल त्योहारों में मिलने का जो असली अर्थ तो वही है। साथ में हम ये परंपराएं क्यों मनाते हैं, क्यों ये हमारी धरोहर है, अपने आने वाली पीढ़ी यारे हमारे बच्चों को जरूर इस बारे में बताना चाहिए। क्यों विशेष व्यंजन बनते हैं, जैसे कि प्रकृति के अनुरूप जो जो उस वक्त उपलब्ध होते हैं, चाहे आप धान की बात कीजिए, अनाज की बात कीजिए, फल सब्जियां जो भी उपलब्ध होती हैं उस वक्त प्रकृति के हिसाब से, जो भी वो पैदावार होती है उनसे जुड़ी हुई व्यंजन जब बनते हैं, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, उसके पीछे क्यों ये बनाया जाता है, इस पे विचार विमर्श हो, उस पे डिस्कशन घर में बैठ के कीजिए, आप देखिए इतना आनंद आएगा और बच्चों में जो ज्ञान वर्धन होगा उसके बाद वो वाकई में हमारी परंपराओं और हमारी इन धरोहरों की जो असली महत्वपूर्ण इसकी महत्ता है उसको समझेंगे।
1: बिल्कुल, बच्चों के ऐसे सवाल होते हैं कि भाई आप गणपति जी को भोग लगाते हैं तो चावल के आटे वाला ही मोदक क्यों लगाते हैं, अन्नकूट पर पूजा करते हैं तो क्यों उस समय ये वाली ही सब्जियां बनती हैं। बहुत सारे, जो भारत एक कृषि प्रधान देश है और जो त्योहार हैं वो भी कृषि प्रधान बहुत सारे होते हैं, बैसाखी है, अन्नकूट है, पोला है, ऐसे न जाने कितने त्योहार हैं जो कृषि पर ही निर्धारित होते हैं। जब नई फसल आती है ये अक्टूबर के महीने में
0: जी,
1: तब जो भी फल सब्जियां या धान उगाए जाते हैं उन सबका भोग लगाया जाता है अन्नकूट में। इसी तरह से बैसाखी में जब सरसों की खेती होती है, सरसों काटी जाती है, गेहूं कटता है और जो भी अनाज कटते हैं तो उनकी वो खुशियां मनाई जाती हैं
0: और उन्हीं से ही जुड़ी हुई चीजें बनती हैं घर में,
1: है ना। इसी तरह से संक्रांति आती है तो क्योंकि सर्दियों में हमारे शरीर को गर्माहट की जरूरत होती है तो तिल का विशेष रूप से
0: ग्रहण किया जाता है। बिल्कुल, और आखिर त्योहार की असली खुशी तभी है ना चंचल जब हमारे चेहरों के साथ साथ किसी और के चेहरे पे भी मुस्कान आए, तो त्योहार की खुशियां उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
1: इसी तरह से एक संदेश में हमारे श्रोताओं का कहना है कि त्योहार पहले भी हमारी धरोहर थे और आज भी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले संयुक्त परिवार होता था, एक बड़ा परिवार होता था, सब साथ मिलकर खुशियां मनाते थे, त्योहार मनाते थे, खूब आनंद आता था। आज क्योंकि एकाकी परिवार हो गए हैं और अलग अलग हो गए हैं सब, लेकिन छोटे परिवार हो गए हैं, त्योहार हम आज ही मनाते हैं। तो ये बात सही है, महानगरों में जगह की कमी के चलते एकल परिवार ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन जब कोई त्योहार होता है तो भले हम चार दिन एक साथ ना बैठे लेकिन उस दिन जब त्योहार मनाया जा रहा है तो घर पर पूरी चहल पहल होती है। वो जो छोटा सा भी घर हो ना तो पूरा मेहमानों से भरा पूरा लगता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश आया है, ये कहते हैं कि वर्तमान समय में पश्चिमी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के बीच हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारे त्योहारों का मूल स्वरूप और पवित्रता बनी रहे।
1: इन बातों को हम और आगे बढ़ाएंगे लेकिन फिलहाल घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि एक छोटे से अंतराल का समय हो गया है।
0: जी।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।

0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहे, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल, वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, इस समय कार्यक्रम सखी सहेली, और कार्यक्रम हम फिर से लेकर आ गए हैं अंतराल के बाद, है ना?
3: जी बिल्कुल। चंचल, सृष्टि की रचना जब हुई, ऐसे हमारी एक सखी ने लिख भेजा है कि तब से मनुष्यों ने खास अवसरों पर मिलजुल कर जो कार्यक्रम संपन्न किए, वे कालांतर में त्योहारों का उन्होंने रूप ले लिया, और आने वाली पीढ़ियों ने नित नए प्रयोग कर उसमें कुछ जोड़ भी दिया, और अब ये कहती हैं कि उसी लोग उन्हें उसी बातों को ही आधार मानकर एक निश्चित दिन पर ऐसे आयोजनों की परंपरा करते चले आ रहे हैं, और हम आज भी पूर्वजों की जो राह है उस पर चलते हुए उन सभी परंपराओं का पालन करते हुए हम नियत तिथि पर होली, दिवाली, रक्षाबंधन जैसे त्योहार मनाते चलते आ रहे हैं।
2: और भाई, जिस तरह से एक नियमित क्रम चलता रहता है त्योहारों का, हमारे कार्यक्रम में भी हमारी बातें, कुछ जानकारियां और गानों का एक क्रम चलता रहता है, तो गाना सुन ले।
3: चलिए सुनते हैं।
4: ये तो कहो

0: तो भाई जब हम घर पर बहुत सारे मेहमान आते हैं तो हम उनसे नहीं पूछते कि वो कौन है, क्योंकि हम सबको जानते हैं, लेकिन कई बार कुछ अजनबी चेहरे भी आते हैं और वो भी हमारे चिर परिचित बन जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और त्योहारों के बीच में जब अगर एक सुंदर सी साड़ी पहनने को मिल जाए ना घर की महिलाओं को, घर की एक महिला को, जो उसके जो चेहरे की मुस्कान जो होती है, वो जो खुशी होती है, वो एक अलग ही होती है।

0: होती है। और ऐसे में अगर मोठड़ा साड़ी मिल जाए राजस्थान के प्रसिद्ध, तो फिर तो बात ही क्या है।
1: बिल्कुल, और राजस्थान की बहुत कहते ना कि डिमांड वाली साड़ियों में से ये एक है, और लहरिया का ही एक वर्जन भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसा लहरिया होता है ना उससे मिलता जुलता ही ये होता है। लहरिया में बस सीधी सीधी लहरें होती हैं, लेकिन जो मोठड़ा साड़ी है उसमें जो लहरें होती हैं वो एक दूसरे को काटती हुई थोड़ी सी आड़ी तिरछी, और फिर वो चौकोर बन जाती हैं आड़ी तिरछी जब काटती हैं, और देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दो लहरिया साड़ी एक के ऊपर एक चढ़ा दी गई हो, और इसी की वजह से इसका जो डिजाइन है वो ज्यादा भरा भरा और आकर्षक लगता है।
0: बिल्कुल, कुछ और खास बातें हैं चंचल इस मोठड़ा साड़ी की, जैसे लहरिया से थोड़ी अलग बनाती है इसको। लहरिया में एक साथ दो रंग होते हैं, पर मोठड़ा में जहां दो रंग मिलते हैं वहां तीसरा रंग अपने आप बन जाता है। जैसे लाल और पीला मोठड़े के बीच में नारंगी आपको दिखेगा, और यही इसका असली आकर्षण भी है।
1: बिल्कुल, और मोठ राजस्थानी में किसी दाने या गांठ को कहा जाता है, और क्योंकि ये जो साड़ी होती है इसे बांधने के समय गांठें लगाई जाती हैं, और मोटी मोटी गांठें लगाई जाती हैं, इसीलिए इसका नाम मोठड़ा साड़ी पड़ गया। और ये साड़ी बंधेज की तकनीक से ही बनाई जाती है। इसमें कपड़े को दो बार अलग अलग दिशा में बांधकर रंगा जाता है, पहले एक रंग में रंगकर सुखाया जाता है, और फिर दूसरी दिशा में बांधकर दूसरे रंगों में इसको रंगा जाता है।
0: बिल्कुल, और पहले ये साड़ियां सूती कपड़ा माने कि कॉटन में बना करती थी, लेकिन आजकल अब तो शिफॉन में भी बनने लगी है, जॉर्जेट में भी बनने लगी है ये वाली साड़ियां, और क्योंकि शिफॉन बहुत हल्की होती है और आप चाहें तो रोजमर्रा में भी इसको पहन सकते हैं, इस वजह से ही इसकी मांग भी बहुत ज्यादा होने लगी है बाजार में।
1: हाँ, लहरिया और मोठड़ा जो है ना ये ज्यादातर इसी मौसम में पहना जाता है, और ये होते हैं थोड़ी चिपचिपी गर्मी वाले दिन
0: जी।
1: तो क्या होता है कि जो ऐसी हल्की फुल्की साड़ियां हो जो हमें तकलीफ ना दें, हमें बहुत आरामदायक महसूस कराए, इसीलिए सूती जॉर्जेट शिफॉन ऐसे कपड़े में इन साड़ियों की डिमांड जो है वो ज्यादा
0: होने लग जाती है। और सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला रंग भी इसमें है, जैसे कि पिंक रानी जो गुलाबी
1: कलर गहरा वाला होता है ना, रानी महारानी की पिंक जिसे कहते हैं।
0: बिल्कुल, और साथ में लाल पीला हरे रंग का एक अलग अलग रंग के कॉम्बिनेशन बहुत पसंद करती है महिलाएं। तो ये गोटा पट्टी वाला मोठड़ा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में रक्षाबंधन पर जो सोगी की रस्म में गोटा वर्क वाला मोठड़ा उपहार में भी दिया जाता है।
1: और राजस्थान में मोठड़ा को सुहाग और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। दीपा, नई दुल्हन जब पीहर से आती है तो उसका जो पहला सावन का तोहफा आता है उसमें मोठड़ा साड़ी भी कई बार रखी जाती है, और कुछ कुछ जगह पर इसका जरूरी भी माना जाता है। सावन, तीज, रक्षाबंधन मैं तो पहनते ही है, इसके अलावा शादी ब्याह में भी बहुत पहनी जाती है मोठड़ा साड़ी। और राजस्थान में मान्यता ऐसी है कि सावन में लहरिया मोठड़ा पहनना बहुत शुभ माना जाता है।
0: बिल्कुल, और एक संदेश आया है, ये कहती है कि ये पारंपरिक हस्तकला है राजस्थान की, इसमें कपड़े को एक दिशा में मोड़ने के बाद दूसरी दिशा में भी लहरिया लाइन काटी जाती है। साथ में इन्होंने भी यही कहा है कि शिफॉन, जॉर्जेट, कॉटन, कोटा, डोरिया जैसे हल्के मुलायम कपड़ों में पहना जाता है। इसमें गोटा पट्टी, जरी, आरी, तिरी वर्क और खूबसूरत बॉर्डर का भी काम किया जाता है, जिससे पहनने पर ये साड़ी बहुत सुंदर लगती है।
1: अभी महिलाओं को कई बार लगता है ना कि हमारे वार्डरोब में साड़ी नहीं है तो ले ली जाए, कई बार हमारा बजट भी हमें लगता है कि रोक देता है, तो ये साड़ी जो है क्योंकि हल्की फुल्की भी आती है और वर्क वाली भी आती है, तो 300-400 रुपए से शुरू होकर 4-5 हजार तक आप जैसी कीमत में लेना चाहें वैसी साड़ी आप ले सकती हैं इसमें। और प्लेन, गोटा वर्क वाली और इन्हीं के अनुसार इनकी जो कीमत है वो अलग अलग मिल सकती है बाजार में। जब भी मोटर साड़ी लेनी हो तो थोड़ी सी पहचान जो है इसकी वो कर ले, और पहचान करने के लिए क्या करना है कि असली मोटरा जो है वो हाथ से बनाया जाता है, उसके जो रंग की किनारी है वो थोड़ी सी अनियमित मिलेगी आपको, और पीछे की तरफ जो है रंग थोड़ा थोड़ा हल्का दिखेगा। मशीन प्रिंट वाली जो साड़ी होती है उसके पीछे सफेद रंग रहता है, तो थोड़ी सी पहचान करके आप साड़ी लीजिए और बस उत्सवों पर, त्योहारों पर और किसी भी खास मौके पर पहन लीजिए।

0: चंचल देखिए त्योहार आए हैं, घर में बहुत साज सज्जा भी कर ली है, बहुत सारी चीजें भी बन गई है, कुछ आदान प्रदान करेंगे या नहीं करेंगे तोहफों का?
1: तोहफों का भी होता है, और कई बार क्या होता है ना, मान लीजिए हम जहाँ रहते हैं हमारे पास पड़ोस में वहां भी वही उत्सव मनाया जा रहा है, तो कई बार जो बहुत सारे पकवान घर में बनते हैं उनका भी आदान प्रदान होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजों का भी आदान प्रदान होता है। अगर मान लीजिए मेरे घर में आज बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और कोई बहुत बड़ी कढ़ाई मेरे घर में नहीं है, बहुत बड़ा भगोना मेरे घर में नहीं है, कितनी सामग्री बनाई जा सके, तो वो भी हम पड़ोस के घर से ले लेते हैं कई बार। और बहुत सारी चीजें सजावट की भी कई बार आदान प्रदान होती हैं, और जो घर में मेहमान होते हैं उनके साथ में आपसी प्रेम भावनाएं, इनका आदान प्रदान
0: होता है। बिल्कुल सही कहा। और हमारी श्रोता ने लिखा है कि आदान प्रदान ये विनिमय प्रथा का एक प्रकार है, जिसमें लेन देन या अदल बदल की एक प्रक्रिया है, जिसमें दो पक्षों के बीच वस्तुओं के अलावा अपने अपने विचारों का भी आदान प्रदान किया जाता है। अब वो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सखी सहेली इस फेसबुक पेज पर हमारे द्वारा लिखी कमेंट उद्घोषिकाएं हमारी पढ़ती हैं, यानी सहेलियां पढ़ती हैं, तो इस प्रक्रिया में भी विचारों का वर्चुअल आदान प्रदान होता है।
1: क्या
0: बिल्कुल सही कहा आपने भाई, आप अगर संदेश नहीं लिखेंगे तो फिर ये कार्यक्रम की खूबसूरती कैसे बनेगी और ये आदान प्रदान कैसे पूर्ण होगा?
1: और ये बहुत जरूरी आदान प्रदान है। और इसी को लेकर एक और संदेश है, इसमें लिखा गया है कि रिश्ते एक सुंदर आदान प्रदान है, जहां कोई अपना समय देता है, कोई विश्वास, कोई प्रेम बांटता है, कोई मौन में भी साथ निभाता है। इन छोटे छोटे हिस्सों में जीवन की बहुत बड़ी खुशियां बन जाती हैं।
0: बिल्कुल। एक संदेश और आया है, वो कहते हैं कि पहले आदान प्रदान पड़ोसी में चीजों का होता था, चीजों के बीच भावनाओं और विचारों का भी हो जाता था, मन की बातों का आदान प्रदान होता है। ये रिश्ते कभी कभी इतने अंतरिम हो जाते हैं कि अपनी राज की बातें भी हम पास पड़ोसियों से कर लेते हैं। शायद इसी आदान प्रदान से रिश्तों में अपनापन आता है। पर अगर कभी मतभेद हो जाए तो यही राजदार अपनी बातों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आदान प्रदान तो करें, साथ में उन्होंने एक सावधानी दी है कि थोड़ा संभल कर करें, ये हमारा अनुभव है।
1: एक अन्य संदेश में एक बात कही गई है, आदान प्रदान हमारी आवश्यकता भी है, कर्तव्य भी, क्योंकि हम समाज में रहते हैं जहां हमें तमाम जरूरतों के लिए एक दूसरे से लेना भी पड़ता है और उनकी जरूरत होने पर उन्हें देना भी पड़ता है। हालांकि रोजमर्रा की जिंदगी में तमाम चीजें अपनी सामर्थ्य से हम खरीद लाते हैं या उत्पादित भी कर लेते हैं, लेकिन पैसा एक ऐसी चीज है जो हमें अक्सर सबसे ज्यादा

0: आदान प्रदान में लेना देना पड़ता है। जैसा कि हम सब एक शादी में तमाम पैसे खर्च करने के लिए एक दूसरे लोगों से मदद ले लेते हैं, बाद में उन्हें वो पैसा लौटा भी देते हैं, इसी तरह से उनकी डिमांड पर कई बार उनके लिए पैसे की व्यवस्था कर देते हैं और वो आदमी भी हमें बाद में भुगतान कर देता है। तो बिल्कुल इस तरह का जब आदान प्रदान होता है तो रिश्तों का खास ख्याल रखिए, क्योंकि इसमें रिश्ते बिगड़ने नहीं चाहिए और हमारे कार्यक्रम का जो तालमेल है वो ना बिगड़ जाए, इसलिए गाना सुन लेते हैं।
1: चलिए सुनते हैं।

0: भाई हमने बहुत सारे त्योहारों की जब हम बात कर रहे थे तो हमने आदान प्रदान की बात भी कर ली, जो त्योहार हमारे धरोहर है परंपरा है इनकी बात भी कर ली, हम क्या पहनेंगे मोटड़ा साड़ी उसकी बात भी कर ली, लेकिन अभी तक खाने पीने की कोई बात नहीं हुई।
1: अरे भाई हो रही है ना, देखिए मोदक बनेंगे, बहुत प्रकार के मोदक होते हैं, तो जिसमें हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है कि उकड़ी चे मोदक होते हैं जो कि भाप में पके हुए सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक मोदक हैं।
0: और ये उकड़ी चे मोदक यानी कि चावल के आटे के मोदक होते हैं जो खास तौर पर महाराष्ट्र में इन्हीं मोदक का भोग लगाया जाता है गणपति बप्पा
1: जी
0: को।
1: ये बता रही है कि चावल के आटे के आवरण और ताजे नारियल गुड़ की भराई वाले ये मोदक भाप में पकाए जाते हैं। उसके अलावा तले हुए मोदक भी होते हैं, इन्हें गेहूं के आटे या मैदे से बनाकर तेल घी में आप तल के बना सकते हैं। फिर मावा यानी कि जिसे खोया बोलते हैं वो मोदक भी होते हैं, तो इसमें चीनी और मेवो को झटपट तैयार किए जाने वाले ये मोदक होते हैं, मतलब अंदर जो फिलिंग है वो मावे के साथ चीनी और सूखे मेवो की होगी। और बेसन के भी मोदक बनते हैं जिसमें भुने हुए बेसन और घी से लड्डू की तरह बनाए जाने वाले मोदक होते हैं। चॉकलेट मोदक भी होते हैं जिसमें चॉकलेट के स्वाद वाले आधुनिक और इंस्टेंट मोदक बनाए जाते हैं। साथ में हमारी सखी बता रही है कि ड्राई फ्रूट्स के भी बन सकते हैं जिसमें अंदर जो भरावण है वो ड्राई फ्रूट्स यानी काजू बादाम पिस्ता इन सब का भी आप कर सकते हैं। तो ये तो प्रकार बता दिए।
0: इसी तरह से प्रकार ही बताने के लिए एक और संदेश आया है और इन्होंने बताया कि बहुत सारे प्रकार के मोदक बनाए जाते हैं, सभी के घर में मोदक का स्वाद अलग अलग प्रकार का होता है, बनाने का तरीका भी थोड़ा अलग हो सकता है, इसीलिए मोदक अलग अलग तरह के स्वाद में नजर आते हैं। चावल के आटे के आवरण वाले नारियल की गुड़ की भरावन वाले मोदक होते हैं, तले हुए मोदक में मैदे गेहूं के आटे से

0: बनाए जाते हैं और भरावन नारियल या ड्राई फ्रूट्स की जाती है और ये घी में तले जाते हैं। मावा मोदक भी बनते हैं जिनमें मावा, चीनी और मेवे से के मिश्रण से इन्हें बनाया जाता है। चॉकलेट मोदक जो है बच्चों के बड़े लोकप्रिय होते हैं जो चॉकलेट और मावा से बनाए जाते हैं। ड्राई फ्रूट के मोदक में काजू, पिस्ता, बादाम इस तरह की चीजों से इनको बनाया जाता है। तिल और गुड़ के मोदक भी बनाए जाते हैं और तिल गुड़ से पारंपरिक स्वाद वाले मोदक बन जाते हैं। खोया पनीर या दूध वाले मोदक भी होते हैं जो दूध से बनी सामग्री से तैयार किए जाते हैं।
1: जी, हमारी एक सखी ने लिखा है कि मोदक के कई प्रकार होते हैं पर हम कैसे बनाते हैं, वो बता रही हैं कि हम मावा में सभी प्रकार के सूखे मेवे डालकर और चीनी मिलाकर घी में तलकर बनाते हैं। अगर चीनी मावा में न डालें तो इसकी चाशनी बनाकर मोदक को घी में तलकर इसे चाशनी में डाल देते हैं और मोदक को चाशनी में लपेट देते हैं, तो वो भी बहुत पसंद किए जाते हैं इनके घर में। इस तरह से हमारी सखी ने लिखा है और साथ में बता रही हैं कि बच्चों और युवाओं के बीच में ये चॉकलेट मोदक है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसमें चॉकलेट और बिस्किट का या फिर नट्स, जो आप सूखे मेवे हैं, उसका मिश्रण भरकर मोदक का आकार दे सकते हैं। फिर एक मोदक का प्रकार बताया है, रसवंती या रसमलाई मोदक। इसमें ताजे पनीर, मिल्क पाउडर, चीनी और केसर पिस्ता के मिश्रण से बनने वाला है ये मोदक। बहुत नरम और स्वादिष्ट होता है। इसके अलावा मावा और पनीर मोदक भी बनता है जिसमें मावा और यानी खोया, चीनी, इलायची पाउडर मिलाकर आसानी से जो मोदक का मोल्ड होता है ना, उससे उसकी मदद से बन जाता है। फिर एक और है जिसमें कि बेसन सूजी वाला, जैसे कि हमारी एक और सखी ने लिखा था कि बेसन और बारीक सूजी को घी में भूनकर और चाशनी या बूरा मिलाकर सांचे में आप इसे तैयार कर सकते हैं।
0: तो चलिए, ये तो हुई बहुत सारे मोदक की बात, अब एक गीत सुन लिया जाए।
1: चलिए।

कांवरिया भगवान सदाशिव से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, अब की बार हमारी खाली झोली भर दो, अगले बरस हम फिर कांवर लेकर आएंगे। ये उच्चारते हुए भाव विभोर भक्तों की भीड़ प्रभु दर्शन के लिए उमड़ पड़ती है।